हुई नहीं सुबह और रोशनी हुई जरूर है, सोती जब दुनिया यहां जागने का दस्तूर है। यहां चलता नहीं है कोई, बस भाग रहे सारे।

चाय की टपरी महफिल इसकी, रौनक की देखो यहाँ भरमार है, लम्हों में यहाँ सालों की रफ्तार है।

साला ये शहर भी अजीब है, जन्नत से दूर और मन्नत के करीब है, मांगता मेहनत और चलता सिर्फ नसीब है। बिल्डिंग तो सब बहुत सॉलिड है यहाँ, और रिश्तों में वो बात कहाँ, आज इधर कल उधर।

ऐसा कौन है जिसको मिली दगा नहीं? भूख से नहीं हमारा मारी और खुदगर्जी और लाचारी, पहले कौन आगे जाए, तेरी या मेरी गाड़ी? मुंबई मुंबई।